0: ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਖਲੀਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
1: जी सत श्री अकाल हुसनैन साहब, कैसे हैं? आपको भी आधा वर्ष करता हूँ जनाब।
0: थैंक यू।
1: वालेकुम सलाम। आप कैलगरी गए हुए थे, तशरीफ लाए, चलिए अच्छा है। जाने से पहले मैं मुलाकात कर लूंगा कल वल आपसे, क्योंकि यादें आपसे बड़ी वाबस्ता। नहीं, बिल्कुल हाजिर हूँगा, और स्पेशली मेहमानों से तो हमारी बड़ी खातिर तवादो और मोहब्बत रहती है जनाब।
0: आपके साथ बातचीत कर लेंगे हम जब आओगे किसी दिन।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी टॉपिक के मुताबिक बात दरअसल ये है, दर्शन साहब देखिए, ये चीजों में असर था पहले, ऐसा नहीं है कि पंजाब में मानते या इंडिया में, वजह थी क्योंकि वाकयात पेश आते थे तो एक दूसरे से, उस जमाने में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता था। तो एक जगह आपने देखी होगी, पंजाब में भी है, वो क्या है कि बड़ा झाड़ होता था, उसके अतराफ कैरी होती थी बनी हुई, यानी कि कैसी बैठने की बेंच जैसी, सीमेंट की या पत्ती की, कच्ची की बना लेते थे उसको, यानी मिट्टी की, तो उसमें बैठ के सारे लोग बातचीत करते थे। उसको बोलते थे खिस्सा दर खिस्सा जगह।
0: जी जी,
1: यानी वाकई पे वाकई सुनाते, यार तुसी सुनाओ की हाल है, घर में की चक्कर है, वो यार वो बीमार हो गया सी, कैसा कैसा हुआ जरा बता। अब वो बोलता है वो फुला आदमी आया था, या वो यार वो बंदे दे नजर दे खराब है सी, तुसी एक काम करो, उसे बर्तन गिलास तुसी अलग रख दो। अब वो क्योंकि दूसरा बंदा अगर निकालेंगे तो मिलेगा नहीं आराम का, लिहाजा उसी को रहने दो, लेकिन उसके बर्तन अलग कर दो। ये जो डायरेक्शन सारे मिलके देते थे, उसमें कोई सियाना तेज दिमाग वाला होता तो उन्हें बताता था साबित करके कि भाई देखो इससे ये असर हुआ। और ये सारी चीजें जो है मुख्तलिफ किताबों में आज भी लिखी हुई है पुरानी। मुझे याद है दादाबा के पास, एक अमृतसर के गुरुद्वारे साहब के पास से किताब पुरानी थी, लेके आए थे, जो प्रिंट हुई हुई थी उस जमाने में अमृतसर में उर्दू में। उसमें लिखा हुआ था फतुहात गैबी के वाकयात। अब जब मैं सातवीं जमात में था, शुरू से बहुत तेज बच्चा हूँ मैं पढ़ने में, उर्दू फारसी अरबी तीनों पे कमांड है मेरा, तो मैं बोलता था पता नहीं क्या चीज है। अब जो मैं पढ़ने लगा तो मेरे समझ के ऊपर से चले गई वो, मैं तो बच्चा था ना, बात चीजें उसमें अजीब और गरीब लिखी हुई थी, लेकिन वो जैसा जैसा शऊर आया, मैं देखा कि भाई अभी वाकया है, बाकी सच होता है। तो उसमें एक वाकया छोटा सा आया था, मैं आपको बता देता हूँ कि एक गांव में पंजाब के किसी इलाके में, आपको मालूम है वो दाची बोलते हैं ना आप लोग, ऊंट पे जो जाते, क्या बोलते हैं,
0: ऊंटनी बोलते हैं उसको,
1: हाँ ऊंटनी को, तो वो सुर्ख ऊंट था किसी जमाने में कहीं अमृतसर के करीबी दूसरे गाँव में। तो जब ये कोई बंदा लेके गया तो उसने कहा यार तू यहाँ क्यों लाया ये ऊंट? बोले क्यों यार, क्या हुआ? बोले हमारे गांव में एक बंदा है जिसकी नजर ऐसी है कि जब वो तेरे ऊंट को देख के बोलेगा ना क्या चंगा ऊंट है, बोलते ही तेरा ऊंट गिरेगा और पैरा हाथ मारने लगेगा, तड़पने लगेगा। बोले अच्छा, बोले कहाँ है जरा वो बंदे को तो बुला ले। तो बोले तेरे पास ऐसी क्या चीज है जो इतने दावे से बोला? बोला मैं इतना अच्छा ऊंट रखता हूँ तो अपने साथ कुछ हिफाजत का, सुरक्षा का इंतजाम भी रखता हूँ, बुला तो सही जरा उसको। तो जाके उसको लड़के बोले भाई वो ऊंट आया गाँव में बड़ा जबरदस्त है। बोला कहाँ है? बोले फुला जगह ठहरा हुआ है झाड़ के पास, चल चल चल बोल के तेजी से भागते हुए। जैसे ही ये ऊंट पे नजर मारा, लेकिन नजर का इसका असर हुआ ही नहीं। ये परेशान, बोले लोग परेशान, यार ये कैसा हो गया, आज तक तो हर चीज गिर जाती थी, टूट जाती थी, ये ऊंट नहीं हुआ। इतने में ये जो बंदा ऊंट को देख रहा था ना, ये ऊंट इसके पे से नजर हटाते हुए कुछ पढ़ रहा था, इतने में इस पे नजर डाला जो ऊंट को देख रहा था वो बदनीयत, जैसे इस पे नजर मारा वो बदना नीचे गिर गया, गिर के मछली की तड़प तड़पने लगा, पेट पकड़ लिया, बोला पता नहीं क्या हुआ मुझे। बोला आइंदा से कभी किसी को नहीं देखना, तेरी जितनी ताकत थी मैं सल्प कर लिया हूं। बोला सल्प यानी उसको निकाल दिया तेरे अंदर से, अब तू जा, तो किसी को नुकसान देने वाला नहीं होगा, तेरा बड़ा चर्चा सुना था मैं, इसलिए आज आया था तेरा हिसाब करने के लिए, अब जा, तेरे को मैं बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। तो ये जो चीजें थे ये हकीकतन थे, हम आज तो, नहीं समझते नहीं,
0: ये तो चलो खलील जी थी। एक बात हमने और भी की है कि अगर पानी हमारे में मक्खी गिर जाए तो हम पानी गिर देंगे, अगर घी में गिर जाए तो घी गिरेंगे, मक्खी निकाल के फेंक देंगे।
1: नहीं, मक्खी निकाल के घी में से इतना फेंकेंगे जितने हिस्से पे वो है, लेकिन आप ये देखिए
0: क्योंकि
1: पानी नहीं, पानी सारा इसलिए फेंक देते हैं कि पानी की खासियत यह है, तासीर यह है कि जिस चीज में वो पड़ता है वो उसको अपने रंग में ले लेता
0: जी।
1: तो नापाक चीज हुई तो सारी चीज नापाक हो गई बोल के फेंकते हैं। घी का, तेल का, दूसरे का ऐसा मामला नहीं है। इसमें क्या है, बहुत सी चीजें, ये भी वाकयात तो उसमें लिखे थे, उसका नाम था सेहत व जिंदगी के पहलू। और एक बात आपके प्रोग्राम में बोलते चलूं कि अक्सर आपने देखा होगा, ये सुना होगा पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको और आपके सामईन को कि अगर आप सुबह में सो के उठने के बाद आपने गौर किया कि एक बालिश या 6 इंच आपका तकिया पीलो जिस पे सर रख के सोते वो नीचे की तरफ आ गया, तो समझ जाना कि आप बीमार होने वाले हैं। और अगर ऊपर की तरफ खिसक गया तो समझ जाना कि सेहत याबी हो रही। तो ये भी अलामतें होती हैं, इसको इंडिकेशंस बोलते हैं। ये स्वयं परमात्मा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आते हैं आपको, लेकिन क्योंकि आपके इल्म में नहीं है ये क्या चीज है तो आप बर्दाश्त उसको समझा नहीं सकते। आप समझ रहे मेरी बात, एक नई चीज आपके साथ हुई तो आप बोलते हैं क्या चीज है यार ये मेरे साथ। तो ये चीजें हैं, बहरहाल ऐसे उसके ऊपर बड़ी प्यारी चीज याद आई, वो ये है कि ये हादसात ना ये समझे अभी के मैं पस्त हूं मैं, शिकस्ता हो के भी ना काबिले शिकस्ता हूं मैं, मताए दर से दिल माला माल है मेरा, जमाना क्यों समझता है मुझे कि मैं तंग दस्त हूं।
0: क्या बात, क्या बात, चलो
1: क्या ख्याल, क्या ख्याल, क्या ख्याल।
0: थैंक यू,
1: दुआओं की दरखास्त है आपसे जनाब। सत श्री अकाल सर,
2: सलामत रहे।
0: सो दोस्तों 647-367-5353 ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਬ੍ਰਮਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ, ਬ੍ਰਮਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ 100 Kennedy Road। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ A to Z, ਕੋਈ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ रेस्टोरेंट ले, कोई ग्रोसरी या बर्तन चाहिए होए, घर दे विच वरत्या जाने वाला कोई औजार चाहिए तुहानू, इन्हां दिनां दे विच अक्सर असी घरां दे विच छोटे मोटे फुल्लां पौद्यां नूं लगाउणे आ या कोई होर छोटे मोटे बाग बगीचा असी बनाउणे, इन्हां दिनां दे विच तुसीं कोई भी छोटा मोटा औजार लै सकदे हो, छोटी मोटी कोई दवाई तुहानू चाहीदी है घर दे विच वरती जाण वाली, फस्ट एड दे तौर ते जो असी अक्सर घरां दे विच रखते सी, तुसी ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तो लै सकते हो। डिस्पोजेबल समान किन्नी भी गिनती दे विच चाहिदा होवे, किसी भी डिजाइन दे विच तुहानू मिल सकता है। घर दे विच कोई पंजाबी थीम उसारना है, घर दे विच कोई फंक्शन है, मेहंदी है, कोई हल्दी है या कोई होर मंगनी है, शादी है, कोई किसी किस्म का कोई भी फंक्शन है, पंजाबी थीम डिवेलप करना है तो पंजाबी सभ्याचार दे नाल रिलेटेड कोई भी चीज तुहानू चाहिए ब्रम्पटन कैश एंड कैरी तो मिल सकती है। 100 Kennedy Road 905-230-4800 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੋਸਕੋ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਟੋਰ ਬ੍ਰਮਟਨ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ। ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਸਪਾਂਸਰ ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਾਮ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਕੇਟਰਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 100-125 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੁਫੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ 40-50 ਆਈਟਮਾਂ ਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਠਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਮਿਠਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟਿਫਿਨ ਲਗਵਾਉਣਾ 7 ਦਿਨ ਲਈ, 6 ਦਿਨ ਲਈ, 5 ਦਿਨ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। 114 Kennedy Road, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905-450-3333 ਔਰ 6430 ਐਰਨ ਮਿਲ ਪਾਰਕਵੇ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905-542-1333। ਵਿਲੇਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲੰਡਨ, ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਔਰ ਵਿੰਡਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਪਿੱਟੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੂਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨੀਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਇੱਥੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਕੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਕੀਆ ਨੁਸੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।

0: AM 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at AM530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब दे अमीर विरसे दी पुक्कल चो यादां दी संतूरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार ले संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाका अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पंटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
1: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
2: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
0: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दियां बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
2: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: 9 6 0 0 0.
1: जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो तां कैन ट्रक नू कॉन्टैक्ट करो। थोड़े कोल AZ लाइसेंस होना चाहिदा है, थोड़ा CVOR बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है, 2 साल दा एक्सपीरियंस भी होना चाहिदा है। कॉन्टैक्ट ले नंबर है 6472927557 6472927557।

0: जब एच के मूवर्स का हो साथ, लोकल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेंशन लेने की नहीं है बात। एच के मूवर्स होम ऑफिस अपार्टमेंट्स एंड डिलीवरी बिग और स्मॉल, वी मूव इट ऑल। वी ऑल्सो शिप कार्स, वी ऑल्सो डू स्टोरेज। 30 years एक्सपीरियंस, वी सर्व विद अ स्माइल। एच के मूवर्स, गिव अस अ कॉल। मिस्टर हरमिंदर, 416-524-6704, 416-524-6704।
1: हासल फ्री मूविंग के लिए एच के मूवर्स।

0: Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: डॉक्टर कुमार डॉक्टर कुमार डॉक्टर कुमार डॉक्टर कुमार लगे हुए नशे तो मुक्ति दवाओ।

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: हेलो
2: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल
1: हां जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल
2: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी
1: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो इंडिया किथे जाना
2: चार टिकटा दिल्ली दी ते दो अमृतसर दी मिल जानगियां
1: बिल्कुल मिल जानगियां दिल्ली मुंबई अमृतसर एहो ता साडी स्पेशलिटी है बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने ते हां स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने
2: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स ले इक्को इक ना कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 905-678-1200 Kataria Tours and Travel
3: 32-55-80
4: ते 98
3: एकी गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
4: वो काउंटिंग नहीं ए ते 32-55-80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही वधिया प्राइस ते 32-98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 गोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828

0: Ataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options suno chahide ne. Jan to see visa services, Nepal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch rahe ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji, Ataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200, 905-678-1200, Ataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper.
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: आज खुश तो बात हो गई था,
4: वो तो होना ही है जो तक नो वीडियो दा, नो फ्रीजिंग नो बफरिंग वाला 4K अल्ट्रा हाई क्वालिटी आईपीटीवी बॉक्स होवे, तई नकदा बनदा ही है।
3: हां मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है।
5: पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
4: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड, 905-204-1313 जां ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा?
6: विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे, पीओ च जंट पढ़ दा। विमला विलेज ला विलेज, विमला विलेज ला विलेज पढ़ दे। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निज्जर जी दे नाल।

0: रोकी तो अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार।
1: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
0: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
1: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
2: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
1: जेड़े लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
2: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
1: 416-509-1509
2: और विजिट

0: ਹੈਡ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ
1: ਫਾਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: स्टडी वीजा एक्सप्रेस एंट्री कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री स्पाउसल फाइल पेरेंट्स पीआर सुपर वीजा नैनी वर्क परमिट फार्मर इन्वेस्टर या सेल्फ एम्प्लॉयड दी फाइल गल की इमिग्रेशन दी हर प्रॉब्लम दा सॉल्यूशन लैन लई कम्युनिटी दे जाने पहचाने अते तजुर्बेकार इमिग्रेशन कंसल्टेंट गैरी विर्क नु मिलो
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया होवे इमिग्रेशन दा कोई भी मसला हमेशा याद रखो इको ही ना अते इको ही था CIC इमिग्रेशन हुणे ही कॉल करो 416-456-6161
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-455-3381 ते 416-457-3381 ते
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाओगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
7: ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਨ ਦ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਐਮੀ ਵੇਅਰ
8: ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੂੰ ਆਓ ਜੱਟ ਖੱਬੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਦੇ
7: ਟੂ ਸਾਊਂਡ ਲਾਈਵ ਐਂਡ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਮੀ ਵੇਅਰ ਲਾਈਵ ਇਨ ਟੋਰਾਂਟੋ August at Great Canadian Casino Resort. Toronto Valeo, ready ho jo. Buy your tickets at ticketmaster.ca or call 647-964-8573.
9: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpradeshradio.com ਜਾਂ www.deshpradeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

0: साफ नजर नहीं आते। इसलिए बहुत लोगों ने LAL लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी चुनी है। यह प्रीमियम कैटरैक्ट सर्जरी माड़ी नजर नु भी कस्टमाइज कर देती है। बिल्कुल टेलर मेड विजन पेशेंट दी लाइफ दे हिसाब दे नाल। कई पेशेंट्स कहते ने कि लाइट एडजस्टेबल लेंस सर्जरी तो बाद मेरी दुनिया फिर साफ होगी, मैं फिर तो नॉर्मल लाइफ जी रहा, ड्राइविंग तो लेके रीडिंग तक क्लैरिटी वापस आ जाती है। क्लिनिक दे सर्जन्स अते स्टाफ हर कदम ते गाइडेंस, कंफर्ट अते केयर दिंदे ने ताकि पूरी जर्नी सेफ, स्मूथ अते कॉन्फिडेंस दे नाल होवे। जे तुसी या थोड़े लव्ड वंस कैटरैक्ट्स दे नाल परेशान हो ता अज ही कॉल करो लूमिया। ऑफिसेस इन वॉन, डाउनटाउन टोरंटो एंड बेरी। डॉक्टर संगेड़ा अते डॉक्टर खान थोड़ी बोली पंजाबी, उर्दू अते हिंदी बोलदे ने। होर जानकारी लई ईमेल करो punjabi@lumia.io punjabi@lumia.io 289-982-9597 289-982-9597 SS Lawn Care ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਚੋਇਸ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਘਾਹ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸੋਡ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵੀਡ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਬਣਵਾਓ ਜਾਂ ਸਾਫ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-655-1984 437-655-1984। जी तुसी भी करना चाहते हो अपना खुद का रेडियो प्रोग्राम तो आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557।
1: डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर, परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहणगे।
2: S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नूं कॉल करो 416-655-2000।
0: टेक स्पिरिट, हजे तक भी तुसी अगर अपने सिक्योरिटी कैमरे नहीं लगवाए ता बिजनेस या रेजिडेंशियल अपने घर लई सिक्योरिटी कैमरे रिकॉर्डिंग अते दुनिया भर दे विच किते भी कैमरे चेक करो अपने फोन दे राही। टेक स्पिरिट 905-621-4100। तुसी होम ऑटोमेशन कोई भी करवानी है, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਹੋਮ ਥੀਏਟਰ, ਹੋਮ ਸਿਨੇਮਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮ। ਟੈਕ ਸਪਿਰਿਟ 905-621-4100 905-621-4100 905-621-4100 ਤੇ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ।

0: रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेस्टेशन 5 डायसन एयर रैप निंटेंडो स्विच रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस
1: राजधानी के किसी भी लोकेशन पर विजिट करें परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें
0: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca
3: ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 6475051557 6475104 1557 ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਡਾਇਲ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 4164772040 416 477 2040